0: और मैं पाचू
1: इटी यूनो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: और मैं पाचू
1: इटी यूनो और रेडियो

0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: यो रिकी टर्न मी अप अ लिटिल बिट यो रिकी टर्न मी अप अ लिटिल बिट